0: रेडियो बैंकुट हॉल नो 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: एक बार फिर तो
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: तुहाडी सेवा दे विच हाजर आपां रोज़ ही

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

और निर्भय पद पाया, दुख हरता यह विद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गहे कृपा निध,

0: मेरे पाओ
1: दूसरी उदाहरण महाराज दिंदी है ध्रुव की। ध्रुव का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब आया हुआ, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव ते प्रहलाद दोवां का जिक्र आया। ते प्रहलाद आप जी रोज पढ़ते हो, हर युग युग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज, हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। हुण इह ध्रुव कौन है? ध्रुव दे पिता का नाम है जी उतानपाद। इहदियां दो घरवालियां, एक घरवाली जिहड़ी पहली है ना वह निहायत ही शरीफ है और भोली है, वह उहदी पट राणी है। तो दूसरी उहदा नां है सुनीति, जिहड़ी पहली है। जिहड़ी दूजी है उहदा नां है सुरुचि। हुण ध्रुव जिहड़ा है छोटी उम्र का हैगा, वह बाहरों अपने साथियों के नाल खेड़दा खेड़दा घर आया। जदों घर आया तो प्यो तो नहीं ना मतरिया है, प्यो तो सका ही है ना। प्यो ने उन्हूं प्यार दे नाल उन्हूं चक लिया। जदों उन्हूं चक लिया तो जिहड़ी सुरीची सी जिहड़ी मतरेई सी उन्हूं मन में गुस्सा आया। उन्हूं मन में गुस्सा आया तो उन्हें ध्रुव की बांह फड़ के अपने घर वाले भी उहदे प्यो की गोदी तो हेठां ला के उन्हूं कह दिता, जे तू इहदी गोदी विच बैठना सी ना तो मेरे पेट चो जन्म लैना सी, मेरे पेट चो जन्म लैना सी। ध्रुव हुण पांच कु साल का बच्चा, पांच कु साल का बच्चा रोंदा रोंदा डुसके लैंदा होया जिहड़ा सी ना सिसकियां लैंदा अपनी मां को गया, तो मां नूं जाके पुछदा, मां मैनू ए दस तू इस घर घर की राणी है जा नौकरानी है? वो मां कहंदी कहंदी पुत्र है तां मैं राणी, लेकिन मैं कोई बंदगी नहीं की, कोई मैं भगती नहीं की। अगों फिर ध्रुव पुछदा कहंदा मैनू ए दस किहड़े तरीके दे नाल मैनू मेरे प्यो का राज मिले। हुण मां बड़ी सियानी सी, जे अज की मां होंदी कहंदी पोता कड़ी गल है, चल फलाने वकील को चलीए इनू बंदा बनाइए, तू एदा ही पुत है, डीएनए चेक कराइए तू एदा ही पुत है, तू तेनू राज मिलना ही मिलना। लेकिन मां बड़ी सियानी सी, वह कहती है कहती पुत जे तू राज लेना चाहना ना तो परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी कर, परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी कर। मैं इतने एक बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब जी एक बचन आता, जिस सिमरत सब किल बिक नासह पित्री हो उधारो, सो हर हर तुम सद ही जाको, जाका अंत न पारो पूता माता की। तू कहंदे उहदे सिमरन दे विच जोड़, मैं इहदे अर्थ ए करदा हुन्ना जे सिमरत सब किल बिख नासे पित्री होए उधारो। मां कहंदी आ पुत्र तू मेरे घर विच पैदा होया, तू इन्नी को बंदगी कर इस धरती ते आया कि तेरे जो पुराने बजुर्ग मरे हुए पुत्र उन्हां दा भी उधार हो जावे तेरी बंदगी दा। और ए हुंदा जी, ए हुंदा जी, मैं तैनूं एक साखी ना जोड़ा। गुरु रामदास जी महाराज गुरु अमरदास जी दे घर दे जवाई बने, ते जवाई बने ते लाहौर तक ये गल जिहड़ी सी पहुंच गई भी जिन्हों असी इथों गलियां चों तोड़ दिता सीगा, वह गुरु अमरदास माफ करना गुरु अमरदास जी के घर का जवाई बन गया। तो ताया नू चाचिया नू भूआ नू सारिया नू प्यार आ गया। कुदरती गल है कि हो जाता इदा। कहिंदे चलो जाके देखिए साडे घर का बच्चा वै, उस घर का जवाई बनिया, गुरु नानक दे घर का जवाई बनिया, गुरु नानक की जोत जिहड़ी तीसरे जामे दे जाके टिकी उस घर का जवाई बनिया। साडे पुत्र की तां जिहड़ी है वह पौर बड़ी होवेगी, उहदे आसे पासे नौकर होणगे, वड्डा घर होवेगा। वह आए है जी मिलन वास्ते, जदों मिलन वास्ते आए आ गोइंदवाल साहब की धरती ते बौली साहब की बौली की सेवा चल रही है। जदों बौली की सेवा चल रही है उन्हां दे लागों एक नौजवान लंघिया, उन्होंने नौजवान नूं आवाज मारी पुत एक भाई जेठा है, एक भाई रामदास है जिहड़ा कुछ साल पहला लाहौर की धरती तो इत्थे आया, असी उन्हूं मिलन आए हां। जदों इह गल सुनी ना तो उस नौजवान ने पिछा जिहड़ा सी मोड़िया, पिछा देखिया, जदों देखिया तो उन्हें पहचान लिया, ये तो मेरे बजुर्ग है, ये तो मेरे घर दे ही है। उन्हें टोकरी एक पासे रखी तो उन्हां दे पैरां नूं उन्हें मत्था ना टेकता। जदों मत्था टेकता तो मत्था टेक के कहा कहिंदे मैं ही तुहाडा जेठा हाँ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇਠਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਧੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਕ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰ ਸਸੁਰਾਰ ਬਸਿਓ ਨਿਰਭਾਗਾ, ਇਸਨੇ ਤੋ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਚਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰ ਸਸੁਰਾਰ ਬਸਿਓ ਨਿਰਭਾਗਾ, ਇਸਨੇ ਤੋ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਚਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਨਮੇ ਬੰਸ਼ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਗਿਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਭੋ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੰਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਾਜਤਾ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਭਿਓ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਪਿਓ ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ

साहब नूं समर्पित होइए, एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होइए। जे असी एक प्लेटफॉर्म ते अपनियां ईगो भुला के इकट्ठे हो जावांगे ना, ते दुनिया दा कोई भी ऐसा कार्ज नहीं गा जिहड़ा सिख जिहड़ा ओ नहीं कर सकदा। सिर्फ अंदर एक दृढ़ अंदर एक संकल्प जिहड़ा होना चाहिदा। सो मीरी पीरी पड़ा जिथों भी चलदा होया केसगढ़ साहिब पहुंच रहा, हाथ जोड़ के बेनती है, वध तो वध कुछ अपनी शमूलियत करो और मन विच ए तहिया करो कि असी अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित होना है। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुलां चुकां खिमा करनियां। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी दा तह दिलों धन्नवाद। इस अस्थान दे सत्कारयोग हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी होरां दा तह दिलों धन्नवाद। आईयां हुईयां संगतां दा धन्नवाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा कोटानकोट धन्नवाद। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ के दास आप तो खिमा दा जाचक होवेगा जी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा संत साहेब खेखड़ा वाले को मिले, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में खेखड़ा गांव है। वो परमात्मा इन महापुरुषों को मिले जो इस दास के नॉलेज में है, और उनको वही ज्ञान दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर देव जी ने 600 साल पहले लिखा था, और वही उसी ज्ञान का आज समर्थन हमारे सभी सदग्रंथ कर रहे हैं कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। तो पुणात्माओं, आज तक हम अपने सदग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जवारी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप दो नंबर का काम करोगे। दो नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपए के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के, 30-30 रुपए के। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ, आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली, फिर झाड़ फूक वालों के फंस गया, लाखों रुपये खराब किए, अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे के को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो इतना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा तेरा सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साई, इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा कैसा है उसको निराकार बता रहे हैं सभी सदग्रंथ हमारे, तो सभी पवित्र धर्मों के, उसको साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं, उसका नाम कबीर बता रहे हैं। अब एक पवित्र धर्म का ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का, उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और सह शरीर है, वो साकार है। जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने बनारस में जाकर देखा था और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, फाई सूरत मलो की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाना भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व कष्ट हरनहार, अंगहारी बंभारी बंदी छोड़ पाप नाशक, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, अल्लाहु अकबर है, उसको हक्का कबीर भी कहते हैं। हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलियुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था, जुलाहा जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे, और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बनारस में धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो। यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं, और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कुमार्ग पर चल पड़ता है, माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर ये कितना कष्ट उठाएंगे, जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाएं। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं, उनके भविष्य का उनको पता होता। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण परमात्मा हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने, और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या तक कुआ भांग पड़ी। अपुन आत्माओं, आप जी यहां पर जिस वस्तु की डिमांड करते हो, परमात्मा से जो कुछ भी मांगने आते हो, वो क्या मांगते हो? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक क्या डिमांड करते हो? निसंतान संतान की इच्छा लेकर ही यहां आते हैं, और कोई निर्धन है जिसके पास धन नहीं है वह केवल धन ही मांगने आता है? किसी को कोई बीमारी कष्ट रोग या कोई अन्य प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, या देव के कारण कोई कष्ट है, तो उसकी निवारण की इच्छा ही लेकर आते हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आप जी को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप ये डिमांड भूल जाओगे। कौन सी डिमांड? नंबर एक संतान की, और नंबर दो घने धन प्राप्ति की। तीसरी जो आपकी इच्छा है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई देव का प्रकोप है, इसका निवारण आपका ठीक है, ये अवश्य इसके कारण भी यहां आने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब सीधे से शब्दों में ये दास ये कहना चाहता है कि कोई भी प्राणी किसी भी आशा या इच्छा या किसी भी कष्ट या संकट के कारण परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं, धन्य है वो प्राणी और धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि यहां आने से आपको तत्व ज्ञान होगा, पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, सभी कर्मों से आप परिचित हो जाओगे, और फिर आप जिस इच्छा को लेकर आए हो उन इच्छाओं को भी परमात्मा से पाओगे, वो भी पूर्ति होगी। लेकिन वो कितनी होगी? जो आपके हित में होगी। जो आपके हित में नहीं होगी वो इच्छा आपकी यहां पूर्ण नहीं होगी। भले ही आप जी ये सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, वो आपकी अपनी सोच होगी। परमात्मा क्या करेंगे वो परमात्मा ही जाने। जैसे एक रोगी व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, और वहां जाने के बाद फिर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है, वो डॉक्टर फिर जो भी ट्रीटमेंट करता है उस मरीज के हित में ही करता है। अब वहां पर मरीज अपनी नहीं चला सकता, वो रोगी यदि अपनी चलाता है, वो चाहता है कि मेरे अनुसार ही डॉक्टर कार्य करे, तो डॉक्टर उसकी जायज जो कोई भी होगी इच्छा आवश्यकता उसी को पूरी करेगा, नहीं तो वो अपनी ही क्रियाओं को करेगा, चाहे मरीज को बुरा भी लगे। अब जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान जावेगी और टांग काटनी पड़ेगी जिससे इसका जीवन बचेगा, तो डॉक्टर उस कार्य को करेगा ही करेगा। आपकी राय अवश्य लेगा कि तू मरना चाहता है या जीवन चाहता है, तो जीवन चाहता है तो तेरी टांग काटनी पड़ेगी, तो फिर वो मरीज भी स्वीकृति दे देता। वैसे तो रोगी नहीं चाहता कि मेरी टांग कटे, लेकिन जीवन रक्षा के लिए वो टांग कटवाना भी उचित ही समझता है और बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप यहां परमात्मा के दरबार में आए हो और ये वो हॉस्पिटल है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को नाश करेगा, समाप्त करेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग आपका नष्ट नहीं होगा, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित बता देगा सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका भी यहां आकर करते हैं, एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक नेक शिष्य का रोल भी वो परमात्मा स्वयं ही करके दिखाते हैं, और एक अच्छे कवि के रूप में भी वो सुप्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाते बोलते हैं, जिस कारण से वे कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने बताया है अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। ऊपर को जड़, जड़ तो वो परमात्मा स्वयं है जिससे सभी ब्रह्मांडों का धारण पोषण होता है, जैसे वृक्ष को जड़ से ही पूरा आहार मिलता है, टहनी तना डार पत्ते सभी उसी से आहार प्राप्त करते हैं, वो सबका धारण पोषण करने वाला होता है, तो वो तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर देव जी है। जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो तना होता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी परम अक्षर पुरुष बताया है, जो तत् ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। तो अक्षर पुरुष वो तना है और मोटी डार जो है वो सर्वपुरुष है, सर्वपुरुष जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। उस काल के यानी सर्वपुरुष की फिर तीन, उस डार के तीन शाखाएं हैं, उसके पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात्र रूप हम संसार। तो यहां बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, इस अज्ञान रूपी अंधकार को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात इसको उस तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, और ये सोच ले कि मैं उसकी शरण में हूं। गीता ज्ञानदाता कहता है वो परमेश्वर कोई और है, मुझसे भिन्न है, उसकी जानकारी मैं भी नहीं रखता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत् ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके, इस आश्रय करके, यानी मैं जो कह रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो जो ज्ञान बताओ फिर उसे सुनो, और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से, और सभी प्रकार के कर्मों से वो परिचित होते हैं, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसको जानकर और फिर अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा का दुख और मरण माने मृत्यु, के जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा है, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, ऐसी अनमोल वस्तु क्या है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। तब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर जरा और मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जरा माने बुढ़ापा। पुणात्माओं, जब तक ये जीव किसी कष्ट को महसूस नहीं करता तब तक ये किसी के कहने से भी मानता नहीं, और जब इसके ऊपर आपदा आ जाती है फिर ये चिल्लाता फिरता है। आप पुणात्माओं, जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनका अनुभव सुनो, उनके साथ अब क्या बीत रही है। पहले वो भी युवा थे, एक पल भी उनको चैन नहीं था, सारा दिन दौड़ धूप में रहते थे, और अब वृद्ध अवस्था में उनकी कितनी दुर्गति हो रही है, और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता और मृत्यु भी होगी, वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता वृद्ध अवस्था भी होगी, तो ये जो हम नहीं चाहते जो कष्ट वो हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये दुख का मूल है, और ये दुख मिटे कैसे, ये मिटेगा जब हम सतलोक में चले जाएंगे, जो जरा और मरण वही मिटेगा, क्योंकि सतलोक में आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी जैसे हम यहां रह रहे हैं, ऐसे ही वहां हमारा परिवार होगा और हमारा शरीर बहुत सुंदर होगा, एक तत्व का बना होगा, उसमें नाड़ी और ये स्नायु आदि नहीं होते, सुक्रम अकायम असनाविरम होता है, यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ, शुक्र से नहीं वहां पर वचन से सृष्टि बनती है, अपना परिवार बनता है, और वहां ना वृद्ध अवस्था आती है कभी और ना मृत्यु होती है।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते, यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 4034397700 4034397700।

0: गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: यहाँ इस पृथ्वी पर आप कितना ही बड़ा व्यवसाय बना लीजिए और कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए और कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, आपके साथ वो धोखा है। आप उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, आप उसको भोग नहीं सकते, तो फिर सारा जीवन बर्बाद करने का औचित्य क्या है आपका? मूर्खता, अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता। और जब आपको तत्वज्ञान हो जाएगा, फिर आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया करोगे, हे परमेश्वर, हमारा पीछा छुटवाओ, हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए नष्ट करो। हे प्रभु, कहीं फिर से जन्म ना हो जावे, क्योंकि हम यही रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते। कंपलसरी होगी, वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ता बासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए, अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रहकर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है, अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं, पहले पौधा उगता है। तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है, और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया, उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो भगवान उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते। और आप वहां धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहां आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था और भूस का कमरा वैसे ही भर गया जिसकी उसको इच्छा नहीं थी, लेकिन तो भी मिल गया, पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहाँ पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण, तो उस भूस की तरह अपने आप ही ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना, यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव ये है कि आप जी यहां जो मांगने आओगे वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा। आपत्ति का अर्थ है जैसे कई बहनें आती हैं संतानों उत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो परमात्मा की रजा होती है लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया, हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद के जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहां उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसकी दुश्मन हो जाए आगे चलकर। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उन्हें उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा, दहेज के बारे में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, वो माँ भी बाप भी बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहां आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है, हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहे वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता, वो अपने हिसाब से उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। पुण्यात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में खोज में घूम रहे होते हो, परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी स्थिति को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा से मिलने वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहां कहां भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरा कोई संत मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं उनके, धीरे धीरे सारे कार्य सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुणात्माओं, आपका उद्देश्य जो है वो बदल जाना चाहिए इस ज्ञान के आधार से। रही बात संकट निवारण की, ये तो नहीं रहेगा आपके ऊपर, उसके लिए थोड़ा सा आपने धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है और उसमें गड्ढा बनाकर उसमें सिंचाई शुरू कर दी जाती है, सैकड़ों घड़े पानी के उसमें डालते रहते हैं, एक दो तीन वर्ष चार वर्ष तक, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है। और जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है वो फिर फल देता है, और इतना फल देता है कि आप भी खा लो, पड़ोसी भी ले जाएं, साथ वाले घर मकान वाले और रिश्तेदारों को भी भेज देना, वो खत्म नहीं होंगे। कहने का भाव ये है कि आज तक आप जो साधना कर रहे थे, वो शास्त्र विदिता कर्म मनमाना आचरण कर रहे थे, आज का अर्थ है कि जो पहली बार परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले। और वो साधना क्या थी, आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी, और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है, आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की बबूल की पूजा कर रहे थे, आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। तीनों देवा काल हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चुके समझियो सबका हो आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं, और यही तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हो ये सब काल के अंतर्गत है। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे, जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल बो रखे थे, और जो कबीर पंथी है, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है, वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर दो अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो पुणात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे। आपको ज्ञान इसलिए करा जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना बिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़, कैर, किक्कर, इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है, और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाट कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे, तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को, कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचुक के रह जाएंगे कुछ दिनों के, यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे, आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये तीन ताप भी नाश नहीं हो सकते, जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितर बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है। वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे और आपका जीवन सुखी होगा। एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, ये दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है, उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा वो सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या बताया जी, यहां उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी, हम चार पांच भाई हैं, सभी को ये बाधाएं थी, हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए, अब वो वहां इकट्ठे हो गए, वो और ज्यादा उद्भस्तार दिया उन्होंने, पहले तो एक एक दो दो था, कई कई हो गए, उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहां बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया, और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपने भूत मारे भेज दिए। अपुन आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत भेजते नहीं कीता, हम अपने भगत का प्रबंध कर देते हैं, कैसे, जैसे कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगाते ही मच्छर सारे भाग जाते हैं, वो फिर दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा कबीर जी का जो सतनाम है, सच्चा नाम आपको दिया जाता है, प्रथम मंत्र भी और दूसरा मंत्र भी, ये ऑल आउट है, और जिस घर में ये ऑल आउट लग जाएगी वो मच्छर फिर दूसरे हैं गजाएंगे भाई। हम जंतर मंतर नहीं करते, और उनको भी चाहिए कि वो ऑल आउट लगा ले, वो भी ले जाए अपना मंत्र यहां से, उनका भी भाग जाएंगे फिर की तरह। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को ना पहचान कर हम ऐसे भटक रहे थे। प्रसंग चला था कि भी कोई तो संतान ही मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, उसके लिए परमात्मा आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देते हैं, भाई क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। ओए होए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया भगवान कबीर साहब ने, आप एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे नो बताओ। मान लीजिए पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे, फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे, संतान तो वो होनी नहीं क्योंकि यहां नहीं है, तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं 27 साल की उम्र में, अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक का डिमांड करते आवे, कल एक भगत का फोन आया, जी हमारा 27 साल में दया करी भगवान ने। और फिर बुंडा सा मुंह करके ने कहा, जी इकट्ठी दो लड़की होगी। मैं कहा तो मैडम मांगने संतान आए थे, ये बुंडा मुंह क्यों कर रहा है? अब तुम तो मांगण तो संतान आओ, तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहे तो भी अच्छा, दो लड़की इकट्ठी दे दी। और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम, वो यहां से चले जाते हैं तो उन संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है, उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो वो बुरा सा मुंह करके कहती है पता नहीं भगवान के घर में के कमी आएगी, यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेक चाहिए थी, फिर वो बताओगी उड़ फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर नू पुत्र हो जाते हैं, फिर वो वहां धक्के खाओगी। तो पुणात्मा अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना, फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल, भगवान अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान जन उत्पन्न करने की, आठ आठ एक के टाइम में जमेगी और अगले जन्म में फिर सूरी बनावेगा, बारह बारह कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छक ले तू उत्पन्न करके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए, आधा संकट दूर हो जाएगा आपका जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हैं। यहां पर परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के आज दीवान बाती। एक लाख पुत्र थे रावण के, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो एक लाख भी मर गए, आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं आवत संगना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते रहे बोले प्राणी आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। दर माने द्वार पे। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो सारा जीवन, कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं, जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से, और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की होती है, वो हाथ पीटता जाता है, अरे नाश हो गया सब कुछ, क्या लुट गया। कहते जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी, कहे कबीर सुन अंत की बारी। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। अब बात यहां आती है, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर परमात्मा की शरण में कमी काहे की ना, किसी प्रकार का भी अभाव आपको नहीं रहेगा जो आपके लिए आवश्यक होगा। और आप जी को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परमात्मा आप प्रजा नहीं बख्श रहे हैं, तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो। और फिर देखना कैसे कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं, जी आपने जोत बोला था मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था मैंने पाठ भी करा दिया और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो, ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादाहीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। पुण्यात्माओं, अभी आपको बताया धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है, वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है, भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए, जितनी भक्ति दान धर्म सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007
1: जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीजा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुस आया और जिसका नाम है बजरंगी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4367।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।

कड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार, पौड़ी बिन सतगुर के ने न पायो, बिन सतगुर।

0: अगर चरिए मुह चले सोके मारिए के मारिए मुह चले सोके मारिए
1: पौड़ी पड़े होवे गुनहगार तो भी साथ ना मारिए जेहा काले कलणा ते वेहो ना पचारिए ऐसी कलणा खेडिए जित दरगे गया हारिए पड़या ते उमियां विचार की विचारिए मुह चले सोके मारिए मुह चले सोके मारिए।

अर्चन की अन्न प्यास तने, हर दर्शन की मन प्यास तने, हर दर्शन की मन प्यास तने, हर दर्शन की मन प्यास तने, हर दर्शन की मन प्यास तने, हर दर्शन

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतम चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते पवतारन।

0: चितवों अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर्व चिंत जपास सात संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पर जो फरमावे सो कहू। गुरु अमरदास कारण करण जिव तो रख तिव रहो।
1: गुर अमरदास परसिया पहम पातिक बिनाश। गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधिक आसास। गुर अमरदास परसिया ध्यान लहिया पहमुक। गुर अमरदास परसिया अपौल गह चुके। एक बिन दुगन जोत रह जास मंत्र मानवे लहै।

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत संबंधी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी पट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठियां सोही है सबना

सोरठ महला पंजवा अंतर की गात तुम ही जानी तुझ ही पाहे निबेरो बख्श ले।

लाख खते कर फिरो अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे निबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभु।

0: कर कृपया पारु करया पारु करया पारु करया।
1: पावड़ी सतगुरु बिटो महाराज जित मिलया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया ने नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बहुत सागर लेके ने विचारिया।

0: अपराधी दुना नवे जो हंता मृगा है तीत नवाए क्या थी है जरदे कुछ दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल

जान सुब्रह्मं कर्मं सब पोपट ने चो कर्मं कहु नानक ने चो त्याग बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ सामना।

0: सोफल पैसी सातर के पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
1: औड़ी साहब दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिस नु हुकम बनाए सी हुकम मन्या होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चंदिया सोफल पाए सी ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।

नानक गुरु करदा सुध है, हर भगत हर लीजे हर लीजे। श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को करलाओ गोवर्धन ना जाय, तो टिटका तै जप माली ताल मिले खाई, अंतर पूजा पड़े कते बा संजम त्रका भाई।

0: जन नाम तुहर पुन विजया फिर टूट नया हर पुन के
1: श्लोक महला पहला पहला सुचा पे सच बैठा

0: पर खाली है पर काली
1: पौड़ी जित से भी है सुख पाई है सो साहिब सत संभाली है जित कीता पाई अपना सा घर बरी क्यों घाली है मंदा मूल ना की चीज ते लंबी नजर निहाली है ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किछलाहे उपर काली है किछलाहे उपर काली है
0: जिन गुरमुख नाम ते आया अपना फिर विघ्न न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुर धामां दे जिन्ना तो पंथ नु वसोड़िया गया खुल दरसन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे नुमानिया दे मान नतानिया दे तान ने ओटिया दी ओटा तन्ना।

पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबत।

सोरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहि निभेरो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने ला

अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे निबेरो, बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फिरो, प्रभ जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

सास ग्रास भगती कीती है, सिमरन कीता है इस स्थान ते बैठ के। ते सत्संगियो, इस स्थान दा चपा चपा पवित्र है। बाबा

थोड़ा जिन्ना भी मोह नहीं, बस प्यार गुरु नाल, सत्कार गुरु दा, महिमा गुरु दी, ते हर वेले ऐ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

का सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै नानक जंत उपाय कै संभाले सबना जिन करतै

करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्त तिस तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग तिस जोहारी स्वस्त तिस तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर शतर तख दे मालिक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हजूर दी कृपा दा सदका गुरु नानक साहिब जी दी अमृत गुरबाणी आसा की वार इस दी विचार अठवीं पौड़ी नाल जो शलोक ने इस तो आपां अज प्रारंभ करनी है। आओ इस पौड़ी नाल हजूर दे दो शलोक दर्ज किए गए ने। पहले शलोक दा पाठ आप जी ने श्रवण किया है। आपां यतन कर रहे हैं जितनी को मालक ने सोझी सुमत दिती उस ढंग नाल गहरे तो गहरा उतर के यतन करां के इस दे अर्थ भाव और विचार राही संगत दी सेवा कर सकां। कृपा करके आसीस बख्शो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह आप जी तरस करो। सिर ते मेर भरिया हाथ रख के अंदर दी एकाग्रता बख्श के निर्माणता बख्श के दवैश तो रहत हो के आप ही विचार करा लवो। प्यार अदब नाल आसीस बख्श दे हुए उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हजूर दी आसा की वार दी अठवीं पौड़ी दे नाल जो पहला शलोक गुरुदेव ने अंकित किया है इस शलोक दे अर्थ कर लग्या। एक गल जेन विच रख के चलनी है। इस दे एक ता पक्ष ए वे के परमात्मा दी रची हुई इस रचना विच किन्ना कुछ परमात्मा ने पैदा किया है। इंसान भावे पूरा यतन ला रहा है कि हर चीज दी मैनू जानकारी हो जाए मैं आखरी हद तक पहुंच सकां हर चीज

0: ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਟੀਓ ਡੈਕ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਗਰਾਉਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਜ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी।

गुण ते प्रभ भिन्न, पर हजूर ने कहा तिसे बुझाए नानका। जिद उत्ते रब बहुत खुश होवे ओनू अपने बारे समझ दे दिंदा, पर अकाल पुरख रब का कोई रूप रंग रेख नहीं। रूप न रेख न रंग किश, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिद उत्ते रब बहुत प्रसन्न होवे ओनू अकाल पुरख रब अपने बारे सुधी दिंदा है। फिर वो अकाल पुरख रब का नाम जपद, ओदा शुकराना करता है, ओदे नाल जुड़द। नहीं तो संसार सृष्टि के अंदर करोड़ों लोग ऐसे ने जिहड़े रब के शुक्र गुजार ही नहीं होंदे, जिन्हां नूं रब बारे कोई ध्यान ही नहीं है। वो संसार सृष्टि के अंदर बार बार जन्म लै रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। सतगुरु बचन कहा भाई उन्होंने बंदे की सुरत, उन्होंने की पहुंच, उन्होंने की लोड़ सिर्फ शरीर तक या मन तक। वो मन दे रस करके जीते हैं या तन दे शरीर दे रसां करके लोड़ां करके जीते हैं। इस तरह संसार में मन दे रस मुकदे नहीं, शरीर दियां लोड़ां खत्म नहीं होंगे। उम्र मुक जाती है, फिर मर जाते हैं, फिर धरती उत्ते जन्म लेना पैंदा है। ये कई करोड़ों जन्मों तो इस तरह चल गए। जम जन्म मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लमे। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन परंगा। सतगुरु सुखमनी साहब अंदर क्या करोड़ों जन्म बंदे दे इसे तरह लंघ गए, क्योंकि मन दे रस पूरे नहीं हुए, शरीर दियां लोड़ां खत्म ही नहीं हुई। जिमें जिमें उम्र बढ़ती जाती है, तिवें तिवें तृष्णा बढ़ती है, लोड़ां बढ़दियां ने, इच्छावां बढ़दियां ने। अखीर इच्छावां मन विच रह जांदियां ने, उम्र मुक जाती है, बंदे नूं फिर जन्म लेना पैंदा है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने बचन कहे भाई रब किन्हां उत्ते प्रसन्न हुंदा है, जिन्हां नूं रब अपने बारे सोझी दिंदा है। सतगुरु के उन्होंने वेख्या नहीं जा सकता, क्योंकि उसका चक्कर चिहन कोई है ही नहीं। तुसी रोज नितनेम विच पढ़ते हो चक्कर चिहन नर वर्ण जवा तर पात नजे, रूप रंग अर रेख भेख को पहन सकत के अचल मूर्तन पो प्रकाश अमितोज कहिजे, को टिंदर इंदरान शाह शाहान गणिजे त्रिभवन महीप, सुर नर असुर नेत नेत बंतन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम अर्ण तस्मत। कहते भाई इथों तक दुनिया में जिन्ने लोग रब का नाम लै रहे ने, वह भी कर्म नाम लै रहे हैं। अकाल पुरख रब तक पहुंच नहीं है। जे कोई जप रहा वह भी अपन लोड़ां करके पूजा कर, उहदे तक जुड़न वास्ते वह प्रसन्न किन्हां ते हुंदा है, जिन्हां की संसार दीआं इच्छां मुक जांदीआं, जिन्हां दीआं लोड़ां मुक जांदीआं, जिन्हां की इच्छा सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम रह जांदा है, जिन्हां की इच्छा में सिर्फ रब का प्रेम रह जांदा है। रब फिर उन्हां ते प्रसन्न हुंदा है, उन्हां नूं अपने बारे सोझी दिंदा है। बुझाए का अर्थ है सोझी देना। फिर सतगुरु बहुत सरल किया, बादशाह कहने भाई रब तक पहुंचने वास्ते हुण तैनूं गुरु कोल जाना पड़े, क्योंकि शरीर तो बगैर शब्द तो बगैर तू रब नूं बुझ ही नहीं सकदा। अकाल पुरख रब जिसका कोई रूप रंग चक्कर जिहे नहीं, उहदे नाल जुड़न वास्ते तैनूं गुरु कोल जाना पैणा। गुरु फिर शब्द दिंदा है, शब्द के आसरे नाल जदों संसार दी इच्छाएं मुक जांदियां ने, सिर्फ शब्द का प्रेम रह जाता है, उदों फिर सार संगत एक रस हुंदा है, जिहड़ा मन का नहीं तन का नहीं सिर्फ आत्मा का रस। जिहनूं महाराज बाणी अंदर कहिंदे आत्म रस जे जानई, भाई जिन्होंने आत्म रस जाने वो आत्म रस तन ते मन दे रस तो बाद शुरू हुंदा है। अपनी तो सारी उम्र छड्डो कई जन्म मन ते तन दे रस विच ही लंघ जांदे। इस तन दे रस खत्म ही नहीं हो रहे, शरीर विरद हो जाए, अखां वेखण तो रजी थोड़ी ने, शरीर विरद हो जाए, बंदा बोलण तो कदे रजे। हुण तो बहुत गल्लां कर लईआं भाई, हुण नहीं मैं बोलिया कर, हुण तो बहुत कोई सुन लिया, हुण नहीं सुनिया कर। तां सतगुरु जी समझाउंदे भाई इहदी शर्मा मुकदी नहीं है, इहदे रस खत्म नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਤਮ ਰਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਰਸ ਛੱਡੇ ਵੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ, ਇਹ ਚ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਤਮ ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਰਸ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਛੱਡੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਪੀਤਾ ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚਾ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੱਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਠੇੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪਵਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜੀ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੰਮੂ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਰੰਗ

माही फोन करे और रोन लग पे, कह रही भाई साहब जी 9 साल हो गए साढ़े पेपर ही नहीं बनते इतने। मैं कहा फिर की चाहने, कहनी पेपर पक्के बन जाने। तो मैं उन्होंने कह भी रोन तो गल ही नहीं कोई, तुम उदास हो के रो रहे हो, ऐन लगते जिम्मे बहुत घाटा पै गया था। तुसी उस कंट्री में रह रहे हो जित लोग इतों जाते हैं वीजा लगा के 20-20 लाख रुपये ला के, थोनू 9 साल हो गए रेंदे, तो कहीं भाई साहब पेपर नहीं बनते जे कागज ना बने सन रिपोर्ट कर देंगे। मैं कहा रिपोर्ट कितने कर देंगे, कहने इंडिया भेज देने। मैं फिर की होया, करोड़ा लोग इंडिया में रेंदे ने, जे इतने आ जाओगे तो फिर की हो जाएगा, इतों ही तुम गए हो, जे वापस इतने आ गए रिपोर्ट कर भी दिता तो की हो जाएगा। इतने करोड़ा लोग रेंदे ने, कि वह बंदे भुखे मर जाते, कि उन्होंने भोजन प्रशादा नहीं मिलता, तो बेचारी चुप कर गई क्योंकि वो जी आस से मुताबिक नहीं सी। मैं कह रहे तो फिर मैं उन्होंने एक बचन कहा भी अपने मन नॉर्मल अवस्था में लेके जा, मेंटली पोजीशन जी है इन छड़ दो कि साढ़े पेपर बन, अपने वालों कोशिश जो तो डॉक्यूमेंट चाहिए वो करो, जो टैक्स भरना वो उसे सही तरीके दो। जे थोड़े तो अंजल होया 9 साल रब ने रखे, अगे भी अंजल होया तुम रह लोगे, ये बीमार होने की लोड़, अकाल पुरख रब से भरोसा रखने की जरूरत। तो मैं उन्होंने कहा लोग 6 महीने जाते हैं कनेडा, इधर आके कार भी कढ़ा लेंगे ने, कोठी भी पा लेंगे ने, 6 महीने की कमाई में मैं बंदे कार लेंदे भी वेखे ने, कोठी पाद्या भी वेखे ने, तुहानू 9 साल कनेडा रेंदे हो गए, तुसी इधर आके भुखे थोड़ी मर जाओ। तो उन्होंने कहा भाई साहब तुसी तां होर ही गल्लां कर रहे हो, तुसी साडे बारे कहो ना वी पेपर बन दे। मैं कहा मेरे कहण नाल बनदे हो, मैं पहला अपने ना बना लां, मेरे कहण नाल किसे दे पेपर बनदे होण तां मैनूं की उहदे विच दिक्कत है, मैं ते सब नूं आशीर्वाद दे। पर साध संगत ते भुलेखा सर। तां फिर सतगुर सच्चे पातशाह ने नजर कृपा कीती, मैं उन्होंने कहा सतगुरु जी की बाणी पढ़े करो, बाणी का जवाब करो तुसी, तो सहजे सहजे मन की अवस्था वो ठीक हो गई। फिर वो थोड़े महीने बाद कहने जी पेपर अजे बने नहीं, तो मैं कह हूं कि मन कह हूं तो चिंता जी नहीं, जदों भी पाठ पढ़ने फिक्र हट गए मन बन गए ठीक है नहीं ना भी कोई गल नहीं। जदों किसी चीज की इच्छा छड़ दोगे, अकाल पुरख रब वाहगुरु का नाम जपन लग जाओगे, वो चीजा अपने आप थोड़े को आनिया शुरू हो जाएगी। ये कुदरत का नियम है भाई, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगी फिर जो हर हिरदय सदा वसा। साहब कहिंदे जप मन सतनाम पढ़ो, जप मन

0: नानकी इन्हें बहुत वड्डी वड्याई लैनी है। ये छेवें पातशाह ने वचन कह दिया, इहदे घर विच महावली पैदा होंदे, वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ताइयों सात संगत श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की विआह शादी आनंद कारज 1632 होए, इतिहास पढ़े 10 साल 15 साल 20 साल औलाद नहीं हुई गुरु तेग बहादुर महाराज। 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल 30 साल लंघ गए, औलाद नहीं हुई गुरु तेग बहादुर महाराज दे। एक वार भी माता नानकी दादी है ना, मां है गुरु तेग बहादुर साहब की, एक वार भी अपनी नौ पुत्र जबान तो यह नहीं कहा, क्योंकि माता नानकी विश्वास सी छेवें पातशाह के बचन हुए ने इहदे घर महाबली योदा होना है। बार बार एक गल मां नानकी कहिंदे रहे, गुजरी पुत दिल वाला ना करी, बाणी पढ़न अंकार नूं चेते कर, तेरी भुख तो महाबली योदा पैदा। सात संगत 30 साल लंघ गए, ये जिंदगी का बहुत अहम वक्त है। इतने तो 5-7 साल किसी के औलाद ना हो गए झगड़े पै जाते, लोग इधर उधर खिसक जाते। 30 साल औलाद नहीं हुई, इतिहास पढ़ो 32 साल कोई औलाद नहीं हुई। 33 साल बाद ननकार की नजर वरती, ब्याह तो पूरे 34 साल 1632 तो लैके 1666 ईस्वी पूरे 34 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हो। इसलिए सात संगत गुरु ते विश्वास रखना, बाणी पढ़नी, नाम जपना, इस संसार दी लोड़ा मन दी तन दी ये भी पूरी होंदिया रहिंदियां, पर सब तो वड्डी जरूरत आत्म रस है, वो गुरु कोलो मंगना, जिहदे करके अपना जन्म मरण खत्म होना है। सारी संगत दा धन्नवाद।
1: कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट जगतगुरु

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: तन ओ मस्तक तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

पहली पंक्ति दे विच खालसा जी महाराज आख रहे ने अंतर की गत तुम ही जानी, हे परमेश्वर परमात्मा मेरे अंदर दी पीड़ नू, मेरे अंदर दी अवस्था नू केवल तुसी जान दे हो। कोई किसी दे अंदर दी अवस्था दे बारे जान नहीं सकता, क्योंकि कौन पुन्नी है, कौन पापी है, किदे पल्ले किन्ने गुनाह ने, ये किसी दे मथे ते नहीं लिखिया। उहदे जीवन करदार दे विचों पता लगता है, जां साध संगत केवल पूरा गुरु समर्थ दाता जानता है। दसम पातशाह जी का पावन बचन है, घट घट के अंतर की जानत करो कृपा जी, भले बुरे की पीर पछाणत। हे वाहिगुरु, तुसी घट का अर्थ है हर जगह भी जानण वाले हो, हर छोटे तो छोटे अंदर दे ख्याल फुरने नू जानण वाले हो, ते केवल परमात्मा जी तुसी हो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत, भले दे अंदर की ख्याल चलता है, केड़ी भावना चलती है, ते बुरे दे अंदर दी केड़ी पीड़ है, ये केवल वाहिगुरु तुसी जानते हो। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दा अमृत बचन है, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। इत्थे साहा किनू कहा जी, अकाल पुरख नू, गुरु नू। कह लगे हे परमात्मा तुसी मेरे मालक हो, ताडे दर्शन कीत्या मेरे जीवन दे अंदर सुख प्राप्त हुंदा है। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख हो।

महाराज ने परमात्मा की वडियाई कीती है, कह लगे गुरु साहब तुसी बख्शिश दा घर हो, तुसी मेहरबान हो। पातशाह दा यह भी अमृत बचन आप पढ़ते हाँ, पातशाह कहिंदे ने कर बंदे तो बंदगी जिचर घट मैं साह हो। बंदे तो अपने कोलों बंदगी कर, जिन्ना चिर तेरे प्राण ने साह चलते ने गुरु तेनू बख्श लवेगा। पता नहीं केड़ा सुवास तेरा जिहड़ा है वह अंदर दी खेड़ परमात्मा का नाम जपदिया बन जानी है, तेरे सारे कीते गुणा पाप जिहड़े ने वह खत्म ते राख हो जाने ने। तो साध संगत जी, गुरु पत ढकण वाला है, गुरु बख्शिंद है, गुरु मेहरबान है। गुरु पत ढकण ते आ जावे, दुनिया अंदर बंदे दी पत कोई नहीं उछाल सकता। जे गुरु साध संगत जी पत ना ढके, बंदा लख जतन कर लवे, बंदे दी पत कदे भी नहीं बन सकती। पत दा अर्थ है इज्जत। केवल जे इज्जत बनती है गुरु दा नाम जपया बनती है। प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पत सेती कर जावो। एक नाम जपया, गुरु दा आसरा लिया, वड्डा लाभ यह मिलता है, पूरे गुरु दे चरणा च थां मिलती है, बंदे दी संसार दे अंदर इज्जत ते पत बनती है। हजूर बचन कर रहे ने, महाराज कहन लगे पातशाह तुसी बख्शन वाले हो, बख्श लियो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। मैं बार बार फेरियां विच जन्म मरण दे गेड़ियां विच आउण वाला है, मेरे जन्म मरण दे गेड़े जड़े ने उन्हां नूं खत्म कर दियो महाराज। सतगुरु पातशाह ने

0: हे प्रभु जी, हे मेरे मालिक जी, तू मेरो ठाकुर, ठाकुर दा अर्थ हुंदा है पालना करन वाला, तुसी मेरे ठाकुर हो, तुसी मेरे हर वेले नेड़े रहन वाले हो, मेरे नाल चलन वाले हो, जय जय पेखू तैं हजूर, दूर कते ना जाई, राव रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते, गुरु इना महान है साध संगत जी, पातशाह बोल कह रहे ने, कहन लगे मालिक तुसी मेरे प्रभु जी मालिक भी हो, पालना करन वाले भी हो, तुसी हर वेले मेरे नाल रहन वाले हो,
1: हर चरण शरण मोहे तेरो,
0: हे हरी हे मालिक परमात्मा, मैं तुहाडी चरण ते शरण विच आ गया हां, और सतगुरु मैं तुहाडा चेरो, चेरो दा अर्थ है मैं तुहाडा सेवक बन गया हां, पातशाह मैं तुहाडा गुलाम बन गया हां, गुरु दे दर दे गुलाम होना एक वड्डे भागां दी निशानी हुंदी है साध संगत जी। इतिहास विच पावन बोल दर्ज हन, जिहड़े गुरु दे दर दे गुलाम बन गए उन्हां नूं गुरु ने बाणी दे अंदर सुभागे किया, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, सुभागा दा अर्थ है भागा वाले, कहन लगे जिहड़े गुरु दे दर दे गुलाम हो जांदे ने, गुरु दे दर ते विक जांदे ने ना, दुनिया उन्हां नूं भागा वाले कहिंदी है, उन्हां नूं दुनिया सत्कार दिंदी है। गुरु नानक साहिब पातशाह दा दर घर किन्ना बख्शिंद है, धन गुरु नानक दे पिता जी मनुखता दा भला करदिआं होइआं उदासियां ते जदों गए, और साध संगत जी गुरमत सिखी का प्रचार करते करते गुरदेव पातशाह रोहेल खंड पहुंचते ने। अज रोहेल खंड रियासत नहीं दिसदी, हिंदुस्तान अंदर यूपी दे विच इलाका आ जाता है, और जदों हजूर रोहेल खंड पहुंचे इस रियासत देश दे विच, और इत्थे गुलामां दी प्रथा चलदी सी, जिहड़े भी कोई लावारस जां मजबूर बच्चे औरतां दिसने उन्हां नूं लिया के दूजियां इलाकियां दे विचों रोहेल खंड दे जिहड़े पठान हुंदे सन, नवाब सन, उत्थे लिया के मंडी लगदी सी ते बंदियां नूं उन्हां बच्चियां औरतां नूं वेच दित्ता जांदा सी, और उन्हां नूं खरीद के उन्हां तों वगार करवाउंदे सन, उन्हां तों आपणा कामकार करवाउंदे सन, गुलामां दी मंडी लगदी सी हिंदुस्तान दे अंदर। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज दतार पिता जी इस रोहेल खंड इलाके दे विच पहुंचदे ने। भाई गुरदास जी दे बड़े प्यारे बोल ने, कहन लगे सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगण आरे, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध नवारे, सतगुर आगू जानी है, बां पकर अंदले उधारे, कहन लगे गुरु इना वड्डा आगू है जिन्हां दी बां फड़ लैंदा है उन्हां दा संसार दे विचों भला ते उधार कर दिया करदा है। सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगणारे, गुरु जदों भी अपने सिख का भला करता है ना, चेते रखे उहदे जीवन अंदर गुरु गुण पैदा कर दिया करता है। महाराज सच्चे पातशाह इत्थे पहुंचदे हन, और रात नाल प्यारे सिख भाई मरदाना जी, और सारी रात चीकां रोण दी आवाज कुरलाटां दुनिया दे मालक धन गुरु नानक दे पिता जी दे कन्नां दे विच पैंदियां हन, सिख भी सुणदे ने इह दुखां भरियां आवाजां। जदों इह दुखां दियां आवाजां रात भर सुणियां, सवेर होई, समर्थ दतार पिता गुरु नानक देव जी ने बचन किया अपने प्यारे सिख भाई मरदाना जी, उन्हां नूं बचन कीता, कहण लगे भाई साहब तुसीं हुण कुछ समें वास्ते साडे तों दूर हो जाओ। ये बचन जदों भाई मरदाना जी ने सुनिया, सच जाने हो अंदरों एक दर्द की आवाज निकली है, सतगुरु मैं तुहाडे तो बिना पल भर भी रहना, अपना जीवन जिहड़ा है सतगुरु उहनू खत्म समझदा है, तुसीं कुछ दिनां दी गल करदे हो। भाई मरदाना जी दे चेहरे नूं पढ़दिआं होइआं महाराज ने कहा पुरखा साडा बचन मन्नो, कुछ दिनां लई साडे तो दूर हो जाओ। बैराग विच आ गया भाई मरदाना, अखां विच जाल आ गया, गला भर गया, और हाथ जोड़ के कहन लगे दाता दिल ते नहीं करदा तुहाडे तो दूर होवा पर महाराज तुहाडा हुक्म वड्डा है तुहाडे हुक्म अगे मैं सिर झुकाउणा हां पर महाराज मैनूं इह तां दस दिओ मैं किन्ने दिन तुहाडे तो दूर रहना है और महाराज मैं मिलना किस तरह है तुहानूं मैं मिलांगा कित्थे महाराज इह वी मैनूं दस दिओ। सची सरकार गुरु नानक दे पिता जी कहन लगे भाई मरदाना जी एक हफ्ता तुसीं साडे तो दूर रहना है। गुरु भला परोपकार किवें करदे रहे ने गुरु नानक साहिब महाराज ने किन्ने परोपकार अज तक कीते और कर रहे ने साध संगत। पातशाह कहन लगे एक हफ्ता भाई मरदाना जी तुसीं साडे तो दूर रहना है। महाराज मैं मिलांगा किवें कित्थे मिलांगा। सतगुरु कहन लगे जदों तुहाडे अंदर दी बेवसी होगी ना भाई साहब ना तुहाडे तो रहा गया साडे तो बिना ते तुसीं अपने मन विच फुरना बनाउणा भावना बनाउणी और जिधर नूं तुसीं कदम उस वेले रखोगे भावना बना के असीं उस पासे ही तुहानूं मिल पवांगे। सत बचन हजूर नूं नमस्कार करके भाई मरदाना जी विदा हो गए और गुरदेव पातशाह एक पत्थर दे उपर बैठे ने। दिन दा चढ़ा होया और जदों दिन चढ़िया साध संगत ते कुछ पठान रोहेले पठान आए गुरु नानक दे पिता नूं पिता जी नूं एक रोहेला पठान आया ते उन्हें पकड़ लिया महाराज सच्चे पातशाह नूं और गुरदेव पातशाह नूं कहन लगा जी तुसीं हुण साडे अधीन हो गए हो जिधर नूं मैं कहांगा उधर नूं तुहानूं जाना पएगा। खेडां वेखो पातशाह दियां महाराज तुर पए नाल जी गुरु नानक साहब नाल नाल चल पए और मंडी विच लजा के गुरु नानक दे पिता जी नूं वेच दिता उस रहेले पठान ने। इतिहास कहिंदा 2 अरबी घोड़े मुल गुरु नानक साहब पातशाह जी दा पिया। किन्ना वड्डा परोपकार है गुरु नानक साहब पातशाह दा। परमात्मा दा खुद रूप आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो आप रब परमात्मा गुलामां दी जिंदगी नूं गुलामी गलों लाउण वास्ते मंडी दे विच 2 घोड़ियां दे मुल विच अपने आप नूं आप वेच रहे ने गुरु नानक साहिब पातशाह। है कि इतिहास विच इदां दा हवाला इदां दा सानू साध संगत जी कोई सुनहरी इतिहास दा पन्ना पढ़न वास्ते मिले केवल गुरु नानक साहिब पातशाह। 2 अरबी घोड़े मुल पए हजूर दा और महाराज नूं जिन्हें खरीदिया ना वो एक पीर है पठान है वह अपने घर विच ले गया ते उन्हें यही बोल के कहन लगा जी जो मैं कहांगा तुहानू करना पएगा। जदों अपने घर विच ले जांदा है महाराज दा जिथे जाके उन्हें आसन लवाया पातशाह जिथे जाके विश्राम करते ने उस कमरे विच जदों अगला दिन होया इस पठान पीर दी घरवाली की देखदी है सारा वह कोठा वह कमरा जिहड़ा ये रब्बी नूर दे नाल चमका मार रहा है एक ओरा एक नूर जिहड़ा ये डलका मारदा पिया है। सिर झुक गया इस औरत बीबी का काली नाल जाके अपने पति नूं कहिंदी है कहन लगी पति जी कोई बहुत वड्डा तुसीं पैगंबर परमात्मा का नूर जापदा है अपने घर विच ले आए हो उन्हां दे तां चेहरे की झलक नहीं चली जांदी। जदों सामने गया ये पठान पीर साध सिंह जी धन गुरु नानक दे पातशाह नूं देखिया नहीं गया दर्शन नहीं कर सकिया और महाराज दे अगे सिर नीवा करके ना ये हाथ जोड़ के कहिंदा जी तुसीं कौन हो। हजूर ने पहला जवाब दिता कहन लगे असी खुदा दे बंदे हाँ असी उस मालक परमात्मा दे उहदे आदमी आ उहदे बंदे हाँ। कहन लगा जी इत्थे की करन वास्ते आए हो जे तुसीं खुदा दे अल्लाह दे बंदे हो ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਰਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਪੀਰ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ धन गुरु नानक साहब पिता ने बोल गए, कह लगे भुला मुआफ तां जिन्ने खरीदे हुए गुलाम बच्चे बच्चियां तुसी बंदी बनाए ने, जिन्ना तो धक्के नाल काम करवा रहे हो सीना जोरी नाल, उन्हां सारयां नूं रहा कर दिओ, उन्हां सारयां नूं आजाद कर दिओ। धर्म की किरत करो, अल्लाह खुदा की बंदगी करो, तुहाडे गुनाह तां माफ हो जा सकणगे। और एक इतिहास का पक्ष यह भी इत्थे आउंदा है, कहिंदे गुरु नानक साहब ने खेड वरताई, इस रोहेल खंड शहर के अंदर जिने खूह सी ना उन्हां दा जल सुक गया, और गुरु नानक साहब नूं भी भांडा दे के जल लैण वास्ते जदों भेजिया गया, और महाराज सच्चे पातशाह की खेड़ दे नाल खूहां दे विच जदों जल प्रगट होया, और इस पीर रोहेले पठान दे अधीन सन वड्डे वड्डे इत्थों दे जिन्ने भी हुक्मरान ने, जिन्ने भी अमीर नवाब पठान ने, उन्हां नूं कह के उन्हें सारे गुलाम बंदी जिहड़े सी उन्हां नूं आजाद करवाया। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने नरकां वर्गी जिंदगी भोगण वालियां नूं सच दे राह ते तोरिया, और सतगुरु ने उन्हां दा भला कीता, उन्हां लई बंदी दा छुटकारा करवाया। गुरु नानक साहिब पातशाह वापस दिल्ली आए ते फिर सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते पहुंच गए, और महाराज सच्चे पातशाह जी यही बचन सानू फरमान करदिया होया समझा रहे ने, कह लगे हर चरण शरण मोहे चेरो, मालक जेड़े तेरे दर दे हो जांदे ने ना, वो तेरी चरण शरण दे अंदर सच्चे सेवक बन के दुनिया दे अंदर शोभा ते सत्कार पाउंदे ने। और इतिहास दे विच ये भी दर्ज है, गुरु नानक साहिब पिता जी ने इत्थे शब्द भी गाया, ये शब्द गाया साध संगत जी, महाराज जी ने मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ, मां लाली प्यो लाला मेरा हों लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करूं तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा खाए ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा जबत रहा तेरा नाओ, लोन हरामी नानक लाला। इथे मैं रुकना चाहना है जी, गुरु साहब बचन करते ने कह लगे लूण हरामी, लूण हरामी का अर्थ की है, जे किसे दा खाइए रिजक पैसा, किसे दा नमक खाइए ते उदा मुल भी देना चाहिए, किसे दा साध संगत जी खा के उदा भार जिहड़ा है उन्हूं लाउणा चाहिए है, जिहड़े बंदे खा के मुल भार नहीं ना लाउंदे उदा उन्हां नूं लूण हरामी कहा जाता है। साध संगत जी खाए खाए करे बद फैली, जान विसू की वाड़ी जीओ, इत्थे बंदियां दा हाल है, खा खा के दाता लै लैके परमात्मा परमेश्वर तो रब नूं पहला गुनाह करदे ने, परमात्मा नूं भुला दिया करदे ने, इह किन्नी वड्डी नमक हरामी है। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वडियाई, आदि जुगाद दया पत दाता, तुझ बिन सुरत ना काई। कह लगे तुसी आद जुगाद हर वेले नाल चलन वाले प्राणा दे पति दाते परमात्मा तुसी हो, तुसी मैनू लूण हरामी गुनाहगार नूं भी बख्श के अपने चरणा विच थां बख्श देने हो जी,
1: रहाओ
0: महाराज विश्राम दे के कृपा।

बेसुमार दा अर्थ है जिदा कोई पारावार नहीं है, बेसुमार बेअंत दा अर्थ है जिदा कोई अंत नहीं है, और स्वामी दा अर्थ है मालक। इन्ने गुण बयान किते कहन लगे उच्चो गुणी गहेरो, वड्डे हो उच्चे हो ते गहरा सुभा रखण वाले हो गैर गंभीर हो। वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। चीरा का अर्थ हुंदा है जी साध संगत जी चादर पसारा, परमात्मा का किन्ना वड्डा पसारा है, उहदी किन्नी वड्डी चादर है, उहदे गुणा की चादर बहुत वड्डी है। साध संगत जी सतगुर खेमा ताणिया, गुरु रामदास महाराज जी के संबंध च भट्ट जी कहिंदे ने सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, इहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने। इहो राज जोग गुरु रामदास।

0: रामदास यो राज जोग गुर रामदास। वड्डे भाग ने साडे साथ संगत सानू धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दर घर दी सांझ हाजरी साध संगत जी सत संगत बख्शिश होई है। वड्डे भाग ने साडे कोल धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु रामदास महाराज जी का दर घर इना बख्शेंदा है इना महान है। इथे किन्ने बीमार किन्ने दुखी किन्ने लंगड़े लूले किन्ने पिंगले किन्ने गुनाहगार गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे सरोवर विच इशनान करदे ने और देग लैके कड़ाह प्रसाद की अरदास कराउंदे ने। गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुप्त रूप विच पता नहीं किन्नियां दी पत ढकदे ने किन्नियां दे गुनाह माफ करके अपने गल नाल लाई जा रहे ने। रोज आप सवैया साध संगत जी गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई दे विच सरवण करदे आ यह सानू सवैया याद होना चाहिदा है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाट विखे बिख खाही माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीर्त गी गुर रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास महाराज जी की शरण और गुरु रामदास सच्चे पातशाह का मेहर भरिया हाथ ते जी दी पत गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ढक देन दुनिया की कोई ताकत उस बंदे की पत कदे उछाल नहीं सकती। साध संगत जी महाराज वचन करते ने प्रेम पटोला तैं शह दिता ढक्कण कूपत मेरी दाना बीना साई मैंडा नानक सार ना जाना तेरी तेरी किन्नी अथाह कीमत है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने वचन कहे कहन लगे तुसी वड्डे हो बेअंत हो मालक हो उच्चे हो गुणा का खजाना हो ते गैर गंभीर सुभा दे मालक हो। एक बचन महाराज की बाणी चो आप पढ़ लें तुम दाते गाओ जी अपनी रसना तो पढ़ो सारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाले हम बारक तुमरे तारे। कह लगे मालक ताडे च इन्ने गुण ने जे वा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लईए। अगले बोल ने महाराज दे कहन लगे कोट पराध हमारे खंडो साडा किते एक गुना थोड़ा वे करोड़ा गुना ने साडे पर गुरु इना साडा महान है। मैं बार बार अर्ज कर रहा है साध संगत जी अपने गुनाह वाल नहीं वेखना गुरु की बख्शिश वाल वेखना है। कह लगे कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। महाराज तुसी देख के अनडिप करना जानते हो तुहाडा बिरद इना वड्डा है तुसी बिरद बाणी की लाज रखण वाले हो। पातशाह असी छोटी मत वाले हाँ छोटी बुद्ध वाले हाँ जिदा दे भी हाँ चंगे मनते हैं धन गुरु रामदास धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह असी हां तां तुहाडे ना जी। जिहदे सिर ते दस्तार है वह किसे भी साध संगत जी रूप में किते भी दुनिया के कोने अंदर होवे उहदे सिर ते दस्तार गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का रखिया होया ताज है। पत बंदे दी पग बंदे दी इज्जत ते माण हुंदी गुरसिखां लई इह सुगात है इहनू सांभ के रखना खालसा जी दसम पिता की बख्शी हुई दात है। जिन्हां दे सिरां ते भी गुरु दी इह दात बाणा है केस की केसरी चुन्नियां हन सिरां ते दस्तारा ने समझ लैणा असीं गुरु घर दे हो चुके हां गुरु दे गुलाम हां जिदां दे वी हां असीं गुरु दे हां गुरु साडी पत ढक्कण वाला है। महाराज वचन कर रहे ने पातशाह आखदे ने कहण लगे हे मालक तुसीं गुणां दे अथाह खजाने हो
1: काट सिलक कीनो अपनो दासरो।
0: फिर महाराज ने आखरी पंक्ति विच बोल कहे कहन लगे काट सिलक, सिलक नाम है रस्सी दा, जेड़ी गुनाहां दी मेरी रस्सी है ना, मेरे पैरां नू मेरे अंदर नू जेड़ी पापां दी पापां दियां रस्सियां पईयां होईयां ने, महाराज सच्चे पातशाह उहनां नू कट्टण दी समर्था केवल तुसी रखदे हो, ये तुहाडे विच ताकत है सतगुरु। काट सिलक कह लगे काट सिलक कीनो आपनो दासरो, मेरे अंदर दे जिहड़े गुनाह दे बंधन ने उहनां नू कट के तुसी आपना बनाउणा जाणदे हो।
1: तो नानक कहा निहोरो,
0: कहन लगे सच्चे पातशाह किसे दा मैनू किसे दी मैनू परवाह नहीं है, निहोरो कहन लगे कोई मैनू नोरा नहीं मार सकदा। नोरा आपां पंजाबी दा शब्द है, समझदे आं किसे नू ताना मारना किसे नू मेहना मारना, दुनिया जो मर्जी कहे हां तां अपने गुरु दे ना, साडे पिछे गुरु दा मेहर दा हाथ है, गुरु बख्शेंद सदा साडे नाल है, साडा समर्थ महान गुरु साडे उपर बख्शिश करन वाला है, असी उस गुरु दे सिख हां। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कौडे राक्ष वर्गे जिहड़े बंदे खाण वाले सन किन्ना वड्डा गुनाह करदे सन, बंदे खा जाने तेल दे कड़ाहियां विच तल के, महाराज ने कौडे राक्ष वर्गियां नूं बख्श दित्ता। सज्जन ठग वर्गे बंदे जिन्हां ने पता नहीं किन्नियां जिंदगियां तबाह कीतियां, और ये शब्द का प्रताप है, ये गुरु नानक साहिब पातशाह की बख्शिश है। जिस हवेली विच जिस थान तो रोज पाप हुंदे ने जिंदगियां खोईयां जांदियां ने मौतां हुंदियां ने, उस जगह नूं धर्मशाला का रूप दिता गुरु ने, उत्थों बाणी दियां आवाजां आउण लग पईयां। साध संग तुलंबे पिंड की धर्मशाला भाई सज्जन के घर दे विच बनी है, उन्हों सज्जन ठग तो गुणा का जीवन दे के महाराज सच्चे पातशाह ने अपने दर घर का सेवक बना लिया। साडे तां गुणा बहुत छोटे होणगे साध संगत जी, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, ए अंदरों अरदास करिया करो दाता सारे गुण तेरे ने मैं कौन आ, मैनू कौन जानदा है, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। अगला बोला है विण गुण कीते भगत ना होए, महाराज अपने गुण दिओ तुहाडे गुणा दे नाल ही भगती हो सकती है। इस पावन बख्शिश कीते हुए अज दे श्री मुख वाक साहब की कथा विचार इथों तक आपां सरवण कीती है। सतगुरु का कोटान कोट शुकराना धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। आओ साध संगत जी इथों की जिहड़ी मर्यादा है लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत कथा लड़ीवार पावन

सतगुरु पातशाह गुरु नानक दे पिता जी लड़ीवार पावन बचन दे विच तुखारी राग दा ये शब्द है। महाराज आखदे ने कहन लगे हे मेरिया मना कदे ता सोचिया कर अपने आप विच बैठ के तो दुनिया ते की लैके आया है ते की लैके इथों जाना है। असी आले दुआले दूजे तीजे नाल बहुत गल्लां करदे आ, होरना दिया सज्जे खब्बे बहुत चुगलियां गल्लां लोग करदे ने, पर गुरसिख हमेशा अपने आप नाल गल्लां करदा है। गुरु अमरदास पिता जी ने सानू ये तरीका जुगती दसी है, महाराज ने दात साडी झोली च पाई है, अपने आप नाल गल्लां करिया करो साध संगत, अपने आप दे लेखे दे बारे विचार करनी चाहीदी है, क्योंकि अज दा सुभा है बंदा दुकान दा हिसाब किताब भी रख लैंदा है, बच्चों की पढ़ाई का सारा हिसाब किताब वेखदा है भी डायरी कित्थे पढ़ाई चल रही है, किन्नी परसेंटेज आ रही है, होर सारा लेखा जोखा बंदा करदा है। जे नहीं लेखा जोखा करदा तो अपने अंदर का लेखा जोखा बंदा नहीं कर रहा। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, अपने आपे का लेखा करना चाहिदा है। ते गुरु अमरदास जी ने सानू बख्शिश की है, कह लगे ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए लेखा सानू करना चाहिदा है। पहली गल सच दी संभाल करनी चाहिदी है। ए कुटंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले, साथ तेरा चले ना ही तिस नाल क्यों चित लाई है। अगला बोल है ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। नाल बंदे दे सतगुर आखदे ने कुछ नहीं जांदा, शरीर भी नहीं जांदा, पदार्थ भी दुनिया दे नहीं जांदे, पर एक चीज नाल चलदी है आत्मा दी। दो चीजा चलदियां ने, दो गल्लां हर वेले आत्मा दे नाल चलदियां ने। जेड़े ता गुरु गुरु जपण वाले ने, बंदगी वाले ने, उन्हां दी कमाई नाल चलदी है जीवन दे अंदर, बंदगी उन्हां दी गवाही अर्थां भरदी है। ते जिन्हां ने गुनाह पाप कीते उन्हां दे पाप गुनाह शरीर छुट्टन तों बाद फिर नाल जाके खड़ जाया करदे ने। यहां पंथ तेरा को ना सिंजानू, हर का नाम ते नाल पछानू। सतगुरु कहिंदे जिथे कोई रस्ते विच साडी बांह फड़न वाला नहीं है, उथे गुरु का नाम और प्राणा तो भेज के गुरु गुरु जपया जिहड़ी कमाई कीती है ना, वह बंदगी बंदे दे नाल खड़ती है। गुरु नानक देव पिता जी बोल बख्शिश कर रहे ने, कहन लगे ए मन मेरिया, कहन लगे ए मेरिया मना तू क्या ले आया क्या ले जाए सी राम, इस दुनिया अंदर की तो लेके आया ते की लेके इथों जाना है। भगत कबीर साहब का वचन है, कबीर कौडी कौडी जोर गए जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोर। अज तो असी बैंक बैलेंस अपना पैसे जमा बैंकां विच करवाने आ, पहलिया समयां विच बजुर्गां नूं पता होएगा पैसे बंदे अपने लक नाल बन के वधेरे करके रखिया करदे सन, और लंगोटी शब्द उहदे लई वरत्या गया चीज लई जिहड़ी एक वांसली जी वांग एक कपड़ा हुंदा सी लंबा सारा, पूरा सिक्का उहदे विच पाया जांदा सी, दो बन्नियां तों उहनूं बन्निया जांदा ते लक नाल बद्धा हुंदा सी। जदों बंदे दे प्राण निकलदे ने ना, परिवार संबंधी कोई नहीं इह गल सोचदा भी इहदा संस्कार किद्दां करना है, किस ढंग नाल करना है, और इहदे शरीर की संभाल किवें करनी, उह गल्लां बाद विच ने। सब तो पहला उहदे साध संगत जी लक नाल बद्धी हुई लंगोटी तोड़ी जांदी सी। अज वी ते हालत इही है ना, बंदा अजे हस्पताल विच बीमार पिया हुंदा है, उहदी वसीयत जिमूंदे दी लिखा ली जांदी है। एक बंदा मरदा है सारी उम्र माया की खातर, और जिहड़ी माया की खातर अपने दम सुवास गवाउंदा रहा, परिवार वाले उठे उन्होंने साध संगत उस बंदे की कमाई की हुई पूंजी नूं पहला डप्पिया, अजे उहदे प्राण शरीर विच चलदे पए ने। ते बाणी विच महाराज ने बोल गए, पातशाह कहिंदे दुनिया अंदर कोई भी पति मरदा है ना ते उहदी घरवाली उहदी नार विरलाप करदी है, पर एक ऐसी औरत पत्नी है मालक खसम मरे ते रोंदी नहीं है, खिड़खड़ा के हसदी है। पता क्यों?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਦਸ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਛੁੱਟਣੇ ਨੇ ਦਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ

0: अंदर पापां दी गुनाहां दी मैल तेरे अंदर चढ़ी है ना, उन्हूं केवल गुरु का शब्द ला के तेरे अंदर दी मैल नूं निर्मल तेरा अंदर कर सकता है। मैल घर सच जाने, जेड़ा तेरा असली निज घर है ना, परमात्मा सच रूपी जेड़ा मैल है उहदे विच तेरी पहुंच बन जाएगी, तेरी थां बन जाएगी, जान पछाण हो जाएगी।
1: पत नाम पावहे घर सिधावहे चोल अमृत पी रसो।
0: कहन लगे फिर तेरी पत बन जाएगी मनुख। पत जे बननी है ते नाम नाल बननी है, इज्जत पावेगा नाम जप के पा सकदा है। घर सिधावे अपने घर दा वासी बन जाएगा। कहन लगे चोल अमृत पी रसो, गुरु दा जेड़ा अमृत बचन है ना, अमृत जिहड़ी सिफत सलाह है उहनूं अपने जीवन अंदर पीना कर। चिम चिम वरसे अमृत।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
3: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
4: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
5: किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है। वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है। भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति, दान, धर्म, सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया। सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो, तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो इस मैं ही रखूंगा।

भक्ति, आप अपने मंत्र का जाप और जितना भी ये हवन आदि के लिए, ज्योति के लिए जो भी आप कर सकते हो सामर्थ्य अनुसार, इसको बढ़ाते ही चले जाओ। इसी से आपका जीवन सुरक्षित होगा, क्योंकि जैसे आप सर्दी ज्यादा है कंबल ओढ़ लिया, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आप एक कंबल और डालिए, उसी से बचेगी। क्योंकि जैसे आपके पाप कर्मों की सर्दी ज्यादा है, तो पुण्यात्मा इन साधनों की करने से, यानी आपने स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली, कंबल भी ओढ़ लिया, और फिर भी हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियां भी आप अभी भी ठंडी हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी जान बचेगी, क्योंकि सर्दी बहुत है। अब जो साधन आपको प्राप्त है, ये आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपकी जान बची रहेगी, धीरे धीरे सर्दी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं, ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी, वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा, लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा, और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें, तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेके पे खड़े पाओगे शराब वाला पे, और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के, और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा। आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है। जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा, आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी नाकाल का कुछ मुख में कुछ को दे। अपना आत्मा परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी, और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। अपुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला पूर्ण संत से उपदेश लेकर, वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो, और वो सत भक्ति कर रहा है, और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी है, और तीन तीन चार चार मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सत भक्ति नहीं कर रहा।

0: है? तो परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपनात्माओं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अब आप जी तो यहां मांगने आते हो, गना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं, या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं, तो पहले तो भक्ति कर कुछ दिन, क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीच साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहां जाओगे? आप यहां आओगे भगवान के दरबार में, अर्धोवान और बिठा के लाओगे पड़ोसियों ने, उनका उद्धार कराओगे, तो आपको कार देगा भगवान, अवश्य देगा। और आप मांगो कार, फिर सह सपट्टे कर लू कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियां पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीति ये देखेगा, जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से दिनों नाम लिया है, और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी, पहले तो उनके संकट निवारण किए, और अब उनकी नीत साबित देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते। आज उनकी ऐसी स्थिति कर दी, उन्होंने कार ली, और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे, और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना, कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद। बिना भक्ति करने वाले प्राणी चाहे यहां पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जब जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डले ढोने पर ही लगे रहते हैं। बहुत से प्रमाण है हमारे पास, जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोत। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं, हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो हुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया, और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुणात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दी जय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगे होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा, ऐसी उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी। और एक सेकंड में मारे गए, तीन दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है लेकिन जाने जाने मंत्र होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते चाहे को प्रधानमंत्री मर जाए उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग, उनको फिर यम के दूत काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर, जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा, आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हैं वो नहीं आपको मिल रही। और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपके पुण्यों में आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं, मैं फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया, वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आओगी, और फिर एक कदम आवेगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खाने। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आए कर धर्म राज डर कैसा, जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आऊंगी, सत्संग के वचन के गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आ गए हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लेंगे। और जैसे आपको बताना किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी फिर गफलत कर गया, और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है इनसे हमने मुक्त होना, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर हो गए तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यूकान्यू बना रहेगा और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा प्रोसेस, अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी दुर्गा इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो, तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से, उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहां नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में देवता बनकर बदानी कहां कहां आपको घुमाएगा। और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में विष्णु जी के लोक में ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहां भक्ति नाश होगी, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहां खूब एक बार घंटी दबाते ही बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज की आवश्यकता है, आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं, और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहां से पकड़ के बाजू और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा, आप वहां स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहां खर्च करोगे, विष्णु जी देना चवन्नी आपको वहां पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा नहीं, उसी से में भगा देगा वहां से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिव लोक में रहोगे, वहां समाप्त होती आपकी पूंजी तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊ। तो देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने यहां गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करा कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहां जाएगा विष्णु लोक में ब्रह्मा के लोक में, क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है, तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहां पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊ। तो वहां जब याद करोगे वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी और कहेगा उनको छोड़ दो ये हमारा बच्चा है, लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा, उसको परमात्मा कहां ले जाएगा, अपने लोक में ले जाता है, और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका। और इस प्रोसेस में आप फिर फेल हो गए, फिर धक्के खाए जाइए, चाहे लाख जन्म हो जाइए इस भक्ति से इस मनुष्य के, फिर क्या क्या सहारा मिला आपको? चाहे कितना ही फिर मान ले, फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में। लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है, और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं, ताकि इन नाला का ना किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकलाओ यहां से। और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है, अपना कल्याण करवा मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुर शरणा आए के फिर धर्मराज डर कैसा। एक भक्त बताओ था, नू बोला जी मेरी रात्रि के समय दो जने आए मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी शक्ल ऐसी बुरी उनकी, और ले गए तो मैं उनसे कहूं भाई कहां ले जा रहे हो, कि चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम। तो उनमें से एक ने बोला भाई तू नो कर, पहला पूछा धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और वो कहे मैं तो कबीर जी का भक्त हूं, और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें। धर्मराज बोला भाई, उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा, आते ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको, अगजी आपका ही आदेश था, बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में, और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ, फिर वह बात ही आ जाई रतरा वो या तो मैं मर गया था, और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
5: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
0: मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, हो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ग्याबन गऊ काट के डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानू तेरी खुदाई। ग्याबन गऊ काट के डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानू तेरी खुदाई। गऊ बच्छा तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो कराम आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चावे सो कर दे सतगुरु, जो चावे सो कर दे परमेश्वर। बरम पड़ो ना मत कोई, सेऊ दड़पे शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। जो चावे सो कर दे सतगुरु, बरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की चुरासी खोई, या कथा बताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र ने करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र ने करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर दे दुहाई, मेरी नई पार बसाती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी अग्न बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछे कहानी, ज्यो की त्यों ही पाती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर। सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर। सेक तकी कह मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। परमेश्वर कबीर को काटन चला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा फिर भी सुन जा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चले वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल गई फिर भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारे, बावन करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले वो बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म करे ये बावन करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है सतगुरु। अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन ना था वह भेख जुड़ा अतिवार्या। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन नहीं था भेख जुड़ा अतिवार्या। बन आया के सो बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पर लई परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणा अमृत से अरी होगी वा सुखी डारी। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पे लई परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणामृत से हरी हुई वा डारी। कबीर बट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखन जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर जी आथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सी में बरके, मदराजो पीवे वाई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सी में बरके, मदराजो पीवे वाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। राम देवानंद जी ने दया करी, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके ये किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्याया, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देकर किया ज्ञान उजियाला। चरणों के माँ रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। अपनात्मा, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान ना होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर, और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर वो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बोल रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितने कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप चार ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लाए गए, और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप लिप आप पोते आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कांख होई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई, एक आप बनाओगे औरत की सकल सी बना लेंगे। आजकल तो बड़ी बनाई चित्र ले आवे कितने, पहले आप पे बनाया करते नु चित्र से बना के औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नु बूढ़े बूढ़े है और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नु कहे ए होई माता मनो पोता जी ये है मेरे घर में सुख रही है नुका आप पे लिप है आप पे पोते उस स्थान को मड प्लस्टर से लिपया करती और आप पे बनाई होई व माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई पहनो क्या तुम मेरी सुरक्षा करिए उसको पोते मांगे नुका कल कहां से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो तेरा गज भैयो नुका जंडी पूजे पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे और स्क्रीन का आगे हाथ जोड़ के नौके हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो या अपनी सुरक्षा तो कर लियो ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिया और भगवान को भगवान मान्या नहीं है तेरा गज भैयो। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं अब जैसे कि आपको सत्संग सुनाया था उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आता है गति कर आता है वो तीसरे लोक में रहता है ऊपर मुक्ति धाम में शतलोक में। एक तो ये काल का लोक है 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है और इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको ब्रह्म भी कहते हैं जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है जो अक्षर पुरुष का है पर ब्रह्म का है जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रभु बताए हैं और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छन आवे छन जावे बे कि एक सेकंड में पृथ्वी पर एक सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है वो परदेसी तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं इसी अपनी महिमा के अनुसार अपने गुणों के आधार से जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर और उस अच्छी आत्मा को उस नेक आत्मा को जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है अन्य स्थानों पर नहीं तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। महाराज जैसे अड़ंगे वो क्या करेंगे वो आकर के जो सुन भी ले और मानना नहीं जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे उस अच्छी आत्मा को और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था जाट परिवार में गरीबदास जी का 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे वहां गवाले बनकर गए हुए थे वहां से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था शरीर उसका निढाल हो गए थे गांव वाले गांव में ले आए थे उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा विष्णु का लोक शिव जी का लोक धर्मराज का लोक फिर सब दुर्गा का लोक ब्रह्म लोक और ये जहां ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया फिर सचखंड में लेकर गए वहां परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो, आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई, गोता मारूं स्वर्ग में जा पैठू पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने और आप उसको पढ़कर आप खेचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते ना कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका वेट रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं, जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर है वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आगे कहां, फिर कारीगर के पास, उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई है कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो, अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे, कौन, मुल्ला और काजी और पंडित और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीब दास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी, मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय नंबर एक के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, एक लाख अस्सी को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 180,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए, इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे सिख और बड्डे बकरे और पीवे दारू। अब से पहले इसी इतनी बुराई कर गई इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरुजी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरश कुरश पर अलह तकत है, ओए होए, अरश कुरश पर, अरश माने आसमान के, कुरश माने अंतिम छोर पर, अरश कुरश पर अलह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाहु अकबर का अरश कुर्स पर अल्लाह तकत है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरश कुर्स पर अल्लाह तकत है, और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 180,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी मूसा जी जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तक है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
4: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
4: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रभ दर्श प्यास।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403

0: 8991984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 4034397700 4034397700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: दीनानाथ सुनो,

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ठाकुर गाइए आत्म रंग।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: डेजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग यासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारन हारा हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हव तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सी वह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हरन कनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरता जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे कर्तिक जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे
जी अजंत सब तेरा खेल, वियोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर विख है जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड भईले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूड मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, नाहा जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना। जिंतो नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा

शरण करे की राख शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरी दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरिन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दै मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। रोख लियो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्म बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनाया देव दैत जशन उपजाया। आदंती के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन की सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने। जब दुकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जीते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद सांब। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा।

उतरे सगल विसूरे दुख रोग संतापी उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग कीतो तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम

अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु

अब रख दास पाठ की लाज, जैसी रखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज। द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सोदामा अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए, रखहु दास पाठ की लाज। गुरपारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोहया राम। काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास गिरास विसारिय। अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हो सतगुर कै बलिहारिया। सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे भावै। आपे दया करहो प्रभ दाते, नानक अंक समावै। सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे भावै। आपे

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे सतनाम

सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पशान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मां

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी चौबी घंटे सत्तों दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7।